0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: గా ఉండండి. మీరు ఎవరెస్ట్.
1: मह सेवन दीर्घ जीवन दैनिक रूप में मह सेवन करने बानी ले शक्ति स्फूर्ति जागर बढ़् को साथ ही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाऊ
2: दम र कफ हटा उच्च रक्तचाप नियंत्रण कर मोटो संबंधी रोग जोगा रक्त शुद्धिकरण कर पाचन प्रणाली मजबूत बना आंद्रा मृगौला स्वस्थ राख भोकलाई नियंत्रण में राख तौल घटा पोतो डंडी फोर हटा अनुहार चमक लिया समेत मह सेवन अनिवार्य
1: हरेक बिहान मन तातो पानी मह सेवन गरेर खाँदा यी सबै लाभहरु पाइन्छ. महमा 84 व्यञ्जन मध्ये फ्याट बाहेक सबै तत्वहरु पाइन्छ.
3: शुद्ध महका लागि कहाँ जाने त
4: ल घोराई सोह्र सरा चौकमा रहेको दाङ हनीमा जाने नि.
3: हजुर, हामी कहाँ महको शुद्धताको ग्यारेन्टीका साथै प्रत्येक वर्ष खाद्य परीक्षण गरिन्छ. प्रशोधित मह उपलब्ध हुनुका साथै सहुलियत दरमा मह प्राप्त गर्न सकिन्छ.
5: शुद्ध मह तथा मौरी जन्ने सामग्री पाइने एक मात्र स्थान दाङ हनी प्रोडक्सन सेन्टर घोराई सोह्र सरा चौक. सम्पर्क व्यक्ति राम हरि शर्मा.
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9857318640 र 9848204040.
5: 100% शुद्धता नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो.

बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5584 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: का बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट वीटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्की
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: को अधिकार
1: लहदुर गजब का फरायो कोई भी बेकरी रख दिए फूड ट्रक को फेसबुक पेज फॉलो लाइक शेयर कर 50 कार्टुन पुरस्कार जित्नुस् लो गोजी वाला मोबाइल झिकी हाल्नुस् त अनि कोसेरी बेकरी र बीएन फूड को पेज फॉलो गर्नुस् पुरस्कार जित्नुस् भयो त मजा
2: संचालक नरेश कुमार श्रेष्ठ।

को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफरमा तीन महिना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट र 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।

राम राम सन्जे 5 बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। पाठक समय दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्य ठाउँ से बसाइसराय कर ऐनाको संख्या निरन्तर बढ़ती रलक तथ्याङ्क देखा राखल। भौतिक सुख सुविधाको खोजी रोजगारी शिक्षा व स्वास्थ्य उपचार जस्ता कारण से गांव से बजार हो बसाई सरना क्रमबद्ध गई रहल। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पंजीकरण शाखा अनुसार बीतलक आर्थिक वर्ष 2082-83 ककेल 835 घर परिवारको 2797 जना तुलसीपुरको बसाई सरकारबाट यी संख्या आगत वर्षको तुलनामा 415 जना बढ़ी हो। आर्थिक वर्ष 2081-82 724 घर परिवारको 2382 जना तुलसीपुरमा बसाई सरकारल रह। यी वर्षको बसाई सरकारका ऐनाको संख्या बढ़ती गेल घर्से तुलसीपुर रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा कलाक आकर्षणको केन्द्र बन्ती गैलक दिगिल्बा। पंजीकरण शाखा प्रमुख एम नारायण सापकोटाका अनुसार तुलसीपुरमा बसाइसराय ऐनाको तुलनामा तुलसीपुर से अनेत्र जैनाको संख्या कम बा। आर्थिक वर्ष 2082-83 490 घर परिवारका 1317 जना अनेत्र बसाइसराय दिगिल्बा। आर्थिक वर्षमा भई 366 घर परिवारका 1077 जना तुलसीपुर से अनेत्र बसाइसराय करल रह। तुलसीपुरमा बसाइसरायको एकना ऐना ओ जैना चिन बीचको अन्तर निरन्तर बढ़ती गेलक देगिल्बा। गाउँ तथा पहाड़ी क्षेत्र से बजार क्षेत्र हो मणि ऐना क्रम बहरबेर तुलसीपुरको जनसंख्या ओ सेवा सुविधाको माग समेत बहर्ती रहल्बा। एघोर शहरी तर्फको जनसंख्या बढ़ती जाइबेर खानेपानी सड़क फोहोर व्यवस्थापन स्वास्थ्य शिक्षा यातायात तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा चाप बढ़ल्बा। औरहोर गाउँ से भारी संख्यामा मनै बजार हो ऐना गाउँमा कृषि तथा अन्य उत्पादक मूलक काम प्रभावित हुना करलबा। गाउँमा जो उत्पादन तथा रोजगारीका वातावरण सिर्जना हुई सेकल सेकल बाध्यात्मक बसाइसराय कम कर सिक्जना सरकार वालाहुक्र बटुवा रखल। दाङमा प्रयोगसे 8 नाल बरूवा बन्दुक बरामद गरी राखल। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा लुकाई छिपाई धर्किलक 8 नाल बरूवा बन्दुक प्रहरीसे बरामद गर्लक हो। जंगल तथा झाडीमा लुकाकन धरलक विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ तथा माथतक खर्गिलक प्रहरी टोलीसे आज बिहान 6 बजेसे 11 बजेसम्म विशेष अपरेशनका क्रममा बरूवा बन्दुक बरामद गर्लक। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर हेम बहादुर केसी जानकारी दिएर केसीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय भैंसाइसे खर्गिलक प्रहरी टोलीसे राजपुर गाउँपालिका साथ भैंसाइसे भैंसाई खोलोक किनार लघु झाडीमा नुकाकरण धरलक 1 नाल बरूवा बन्दुक बरामद गरी राखल। उस्तको इलाका प्रहरी कार्यालय कमिरे चौरसे खडिलक टोलेसे बंगलाचोली गाउँपालिका 8 दुलेभिर स्थित सामुदायिक वनक झाडीमा नुकाकरण धरलक 2 नाल प्रहरी चौकी गोल्टाकुरीसे खडिलक टोलीसे दंगीशरण गाउँपालिका 9 बुर्कासाल स्थित झाडीसे 2 नाल बरूवा बन्दुक बरामद गरी राखल। प्रहरी चौकी चिरा घाटसे खड्गिलक टोलीसे शान्तिनगर गाउँपालिका 3 सिर्जना सामुदायिक वन नम्बरसे 1 नाल अस्थायी प्रहरी पोस्ट रिहारसे खड्गिलक टोलीसे लम्हाई नगरपालिका 9 स्थित आम बहु सौली सामुदायिक वन नम्बरसे झाडीमा नुकाकन धरलक अवस्थामा 2 नाल बरूवा बन्दुक बरामद गरी राखल। बरामद भुइलक बन्दुक धर्गिलक थप अनुसन्धान हुइतिरलक परिरे उपरीक्षक केसी जानकारी दिएर। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठानको सभागृहमा 12 सप धरना सेक्जिना जना राखल। शुरूमा 1-4 ठोकेल सब धर सेक्जिना हुइलकमा यस विस्तार कैकन हाल 1-12 सप गृहमा सब धर सेक्जिना बनागिलक प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार प्राध्यापक श्याम लम्साल जानकारी दिएर। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सब धर सेक्जिना क्षमताको अनुसार सब
गृह निर्माण तथा विस्तार कर परिपत्र हुईलक वर्षे उह अनुसार योजना बनागिलक उहाँ जानकारी दिरखल बाढ़ी पहिरो ओ भूकम्प जस्त प्राकृतिक विपद का बेला एक फ्यारा देहुर सप ऐन सिक्ना हुईलक अवस्थामा ध्यानमा धरती स्वास्थ्य तथा खाद्य संस्था स्वच्छता मन्त्रालय से क्षमता भरिना निर्णय कैकन देशभरक स्वास्थ्य संस्थान परिपत्र करलक हो। विपदक समयमा सबक सुरक्षित संरक्षण पहिचान परीक्षण ओ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा कर सहज सुइना कैकन मन्त्रालय से थल क्षमताक सत गृह निर्माण ओ विस्तारक प्रक्रिया अगाडि बढाइकला पत्राचार करल पाछा प्रतिष्ठान योजना भरिना तयारीमा जुटलक हो। हुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सुन्ज्या थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अकसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग म शालिक राम चौधरी विधायटु रेडियो मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर बसन्त खत्री हरेक महिनाको चौथो शुक्रबार दिव्य फार्मेसी घोराईदाङमा
2: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
1: नवजात शिशु तथा बाल बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण
2: बाल बालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
1: ज्वरो रुगा खोकी तथा संक्रमणको उपचार
2: पोषण तथा वृद्धि विकास सम्बन्धी परामर्श
1: खोप सम्बन्धी परामर्श
2: नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेरचाह
1: बाल बालिका सामान्य तथा दीर्घ रोगको उपचार
2: साथै प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोमा रिमाल एमबीबीएस एमडी एमएस एफएमएएस डीएमएएस द्वारा प्रत्येक दिन दिव्य फार्मेसी घोराईदाङमा बिरामी चेकजाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ।
1: सम्पर्क नम्बर 082-590-410 98478-28913 98478-26163।